0: இன்னும் சில நொடிகளில் அகில பாரத இசை நிகழ்ச்சி. ரஃபிக் கான் அவர்களின் வயலின் இசை கேட்கலாம். டெல்லி அஞ்சல்.
1: ये आकाशवाणी है. आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम सुनेंगे श्री रफीक खान का वायलिन वादन. देवास घराने की प्रतिष्ठित संगीत परंपरा और उस्ताद रजब अली खान की शिष्य परंपरा से जुड़े श्री रफीक खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत को गहराई और प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं. एक कुशल वायलिन वादक के रूप में वे अपनी उत्कृष्ट बोइंग तकनीक, स्वर की शुद्धता और राग विधान की गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं. उनके संगीत में तकनीकी सटीकता और भावपूर्ण अभिव्यक्ति का सुंदर संतुलन दिखाई देता है, जिससे उनकी प्रत्येक प्रस्तुति आत्मीय और प्रभावशाली बन जाती है. श्री रफीक खान एकलवादन और संगत में भी समान रूप से दक्ष है. लहरा और लयकारी पर उनकी विशेष पकड़ है. वे सपाट तान, छूटकी तान और गमक जैसी तानों को अत्यंत कुशलता और सहजता से अपनी प्रस्तुतियों में पिरोते हैं. वर्ष 1994 से आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टाफ आर्टिस्ट रहे श्री रफीक खान अगस्त 2026 में ए ग्रेड वायलिन वादक के रूप में आकाशवाणी अहमदाबाद से सेवानिवृत्त हुए. देश के अनेक प्रमुख शास्त्रीय संगीत समारोह में अपनी प्रस्तुतियां दे चुके रफीक खान अपनी भावपूर्ण और नवोन्मेषी वायलिन प्रस्तुतियों के माध्यम से देवास घराने की संगीत परंपरा को निरंतर समृद्ध और प्रतिष्ठित कर रहे हैं. आज की इस प्रस्तुति में श्री रफीक खान के साथ तबला पर संगत कर रहे हैं श्री हेमंत जोशी. श्री रफीक खान अपने वादन का आरंभ करेंगे राग मारू बिहाग से. इसकी विलंबित रचना विलंबित एक ताल में तथा द्रुत रचना द्रुत तीन ताल में निबद्ध है.
2: This is Akashvani. In tonight's broadcast of National Program of Music, we bring you a violin recital by Shri Rafiq Khan. Hailing from the distinguished Devas Gharana in the lineage of Ustad Rajab Ali Khan, Rafiq Khan carries forward a rich legacy of Hindustani classical music with depth and authenticity. A virtuoso violinist, he is acclaimed for his mastery of bowing technique, tonal purity and deep understanding of raga grammar. His music beautifully balances technical precision with emotional expression, making each performance both soulful and elevating. Equally proficient as a soloist and an accompanist, Shri Rafiq Khan is known for his expertise in lehra and laikari, seamlessly weaving taans like sapat, chut ki taan and gamak with finesse. A staff artist of Akashvani Ahmedabad since 1994, Shri Rafiq Khan retired from Akashvani Ahmedabad as an A-grade violinist in August 2026. Having performed at major classical festivals across India, he continues to uphold and enrich the Devas Gharana tradition through his evocative and innovative violin renditions. In tonight's broadcast, he is accompanied on the tabla by Shri Hemant Joshi. Shri Rafiq Khan begins his recital with Raag Maru Bihag. Vilambit composition is set to Vilambit Ek Taal and Drut composition is set to Drut Teen Taal respectively.

0: बढ़ाते हुए अब श्री रफीक खान प्रस्तुत करेंगे राग जोग। इसकी रचनाएं विलंबित एक ताल, द्रुत एक ताल और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है।
1: You just heard Raag Maru Bihag. Continuing the program, Shri Rafiq Khan will now present Raag Jog. The composition is set to Vilambit Ek Taal, Drut Ek Taal and Drut Teen Taal respectively.

0: आपने अभी सुना राग जोग। इसी के साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत श्री रफीक खान के वायलिन वादन का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। उनके साथ तबला पर संगत कर रहे थे श्री हेमंत जोशी। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति आकाशवाणी अहमदाबाद द्वारा की गई। इसी के साथ ही हम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के इस प्रसारण को यहीं समाप्त करते हैं। यह प्रसारण आप तक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहुंचाया गया।
1: You just heard Raag Jog. With that, we conclude the violin recital by Shri Rafiq Khan in the National Program of Music. He was accompanied on the tabla by Shri Hemant Joshi. This program was produced by Akashwani Ahmedabad. With this, we come to the end of the National Program of Music. This broadcast came to you from Delhi Station of Akashwani.